दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया सहर मेला दस्तगिरी नाही। सानू यानी बंदे नू अपने ही दिल नू हर वेले खोजना चाहिदा है, ते घबराहट विच भटकना बिल्कुल नहीं चाहिदा। ए जो जगत है, ए दुनिया मोह माया दा एक जादू, ये एक तमाशा दसी गई है साढ़े गुरुआं वालों। ते इस विचों हाथ पल्ले पैण वाली कोई भी शै नहीं है, जे कुछ है तो सिर्फ ते सिर्फ ओ परमात्मा दा नाम ही सच है।

मैं किद्दां कह दवां कि मेरी कोई अरदास खाली गई है। मैं जदों भी मन भर के रोई हाँ तो मेरे उस परमात्मा नूं हमेशा खबर हुई है। तो जदों भी असी अपने परमात्मा नूं अपना सब कुछ मन के उसके अगे अपना दिल खोलते हाँ तो परमात्मा किसी ना किसी रूप दे विच आ के साड़ा दुख दर्द जरूर वंडाउंदा है।

back after this soulful track and beautiful song. Enjoy kita hone hone tusi mere naal yani ke Pooja Tohani de naal. So welcome back. Mike de is par baithi ha main yani ke energy the powerhouse jo ki tuhari Monday morning de blues nu totally convert kar dindi hai green forest de vich. Hanji te eh agar green forest enjoy karna hai की करना है तुझे बस मेरा स्टे ट्यून रहना है एफएम रेनबो ते क्योंकि टाइम हो गया है प्रोग्राम च प्यारी जी वधिया जी और बहुत ही एंथुजियास्टिक यानी कि तुहानू जोश ना भरन वाली न्यूज़ सुनान दा इनफॉरमेशन भी तो जरूरी है ना क्योंकि इनफॉरमेशन इदां दी जदों हथ मेरे लगदी है कंट्रोल नहीं मैं कर पाती और मैनू हुंदा कि मैं फटाफट आके तुहानू शेयर करा क्योंकि गल ही इदां दी है गल ये है कि महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट दे सत्त कैडेट सेना ते वायु सेना दे कमीशनड अधिकारी बन चुके ने तुसी भी फौज अफसर बनना चाहते हो मेहनत करनी पैंदी है बहुत ज्यादा ऐते थोड़े ना सुपने सुन के देख के पूरे हो जाते ने खैर इन्हां दे सुपनियां दी

हाउ वॉज द सॉन्ग? मजा आया, मजेदार सी ना, और कितना मतलब डिफरेंट जहा म्यूजिक, बस ऐदा ना म्यूजिक और ऐदा दिया वधिया वधिया डिफरेंट जहा गल्ला सुनन दे लई स्टे ट्यून रहो एफएम रेनबो ते मेरे नाल पूजा टोहानी तुहाडे नाल दिल से दिल तक कर रहे हैं जी गल्ला बिल्कुल लाइव, क्योंकि लाइव है तो लाइफ है। और अगली इंटरेस्टिंग जी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी मेरे कोल है, मैनू लगता कि तुहानू मैं जल्दी दे नाल दसा भाई, अजकल असी बहुत ज्यादा वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन कभी ये सोचा कि जदों पहला वैक्यूम क्लीनर बनया सी, ये तो हुण नवी टैक्नोलॉजी ना, लेटेस्ट टैक्नोलॉजी, जिहड़ा पहला वैक्यूम क्लीनर सी वह किदां दा रहा होगा, किने बनाया होगा, किवें काम करता होगा, मैं हैगी ना तुहानू सारिया चीज़ां दसण नू, टेंशन क्यों लैने हो, बनाया किने सी, बनाया ये सब तो पहला मैं दस दिनी हाँ कि अमेरिका दे आईवस डबल्यू मैकगॉफ

वेलकम बैक आफ्टर दिस मजेदार अतरंगी जी गाने तो बाद। हाँ जी, अपडेट ये है कि जिहड़ा मौसम है ना वो फिर तो अज दा दस्या जा रहा है कि अज फिर तो थोड़ी जी हनेरी हनूरी दे चांसेस हैगे ने। चार दिन तपिश बहुत ज्यादा वध जाएगी ते 19 तो बाद दोबारा हनेरी आएगी ते बारिश दी संभावना हैगी है। अज किन्नी हो गई है तरीक, 19 तो दोबारा आनी है ते अज ते 15 है ना। सो हजे अगले 3 दिन जिहड़ा मौसम है वह थोड़ा जा मिक्सड जिहा सिग्नल देने वाला है, यानी कि आंशिक रूप के थोड़े जे बदल कहिंदे छाए रहणगे।

So musically yours and only yours और welcome back once again. Time हो चुका है 8:40 पूरे और ये टाइम हो चुका है जी मेरी इंटरप्शन तो बिना तो हाडे लई बैक टू बैक पंजाबी बीट सॉन्ग्स चलाउण दा यानी कि तुहाडे फेवरेट सैगमेंट अड्डी टप्पा दा टाइम हो गया है सो जद तक तुहाडी अड्डी नूं थोड़ा जिहा ज़्यादा कष्ट आप दिंदे हां क्योंकि वर्कआउट वाला कैलरीज बर्न करन दा सैशन इन्हां गाणियां 'च मैं तुहाडा कंप्लीट करवाउण दी पूरी कोशिश करूंगी सो मैं तुहाडी दोस्त पूजा टोहानी हुण बैक टू बैक ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਓਨਲੀ ਔਨ FM ਰੇਨਬੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे

अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। नहीं, जमाना छोड़ना नहीं है, बल्कि अगर तुम मिल जाओ जिंदगी नू सोनी तरह जीवांगे। सो दोस्तों, प्रोग्राम गीत बहार ते साडा इक्को एक मकसद कि तुसी बहुत सोहणे तरीके नाल बहुत सोहणी जिंदगी जियो। सो प्रोग्राम नू इत्थे ही वाइंड अप करन दा हो गया समां, ते दोस्तों मैं जरूर जावांगी इस प्रोग्राम दे विच, पर जे थोड़े नाल साथ बने रहेगा कुछ ही पलां दे बाद अगले प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच फिर होएगी मुलाकात। ते जांदे जांदे एक गल होर करनी सी, वो ए कि लाइफ दे विच जदों

अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। नहीं, जमाना छोड़ना नहीं है, बल्कि अगर तुम मिल जाओ जिंदगी नू सोनी तरह जीवांगे। सो दोस्तों, प्रोग्राम गीत बहार ते साडा इक्को एक मकसद कि तुसी बहुत सोहणे तरीके नाल बहुत सोहणी जिंदगी जियो। सो प्रोग्राम नू इत्थे ही वाइंड अप करन दा हो गया समां। ते दोस्तों, मैं जरूर जावांगी इस प्रोग्राम दे विच, पर जे तुहाडे नाल साथ बने रहेगा कुछ ही पलां दे बाद अगले प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच फिर होएगी मुलाकात। ते जांदे जांदे एक गल होर करनी सी, वो ए कि लाइफ दे विच जदों असीं सब कुछ कर रहे होंदे आ ते अपने आप नूं टाइम देना बहुत जरूरी है। तो जदों असीं अपने आप नूं टाइम देना है ना, तो उहदे विच एक्सरसाइज, योगा, वॉक दा बहुत वड्डा रोल हुंदा है, क्योंकि छोटियां छोटियां चीज़ां साडी जिंदगी नूं स्मूथ कर देंदियां ने। साडी फिजीक सैट रहिंदी है, जदों असीं फिजिकली फिट होंदे आ ते फिर असीं अपने आप ही मैंटली और सोशली भी फिट हो जाने आ। सो एक्सरसाइज नूं टाइम जरूर देना, जिन्ने मर्जी बिजी होइए थोड़ा जिहा टाइम अपने आप लई सानूं कढ़ना ही पएगा। और एक्सरसाइज नहीं करने मन करता तो हल्की फुल्की वॉक बहुत ही जरूरी है। मॉर्निंग वॉक वर्गी कोई रीस नहीं होंगी, पर कई बार मॉर्निंग टाइम बिजी होंगे तो ईवनिंग दे विच अपने आप नू जरूर टाइम देइए, क्योंकि जेकर असी अपने आप नू टाइम देवांगे तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। सो इसे नाल ही प्रोग्राम नू दोस्तों इत्थे ही कर दें वाइंड अप। तुहाडे लई प्ले करन जा रही हां प्यारा जिहा गीत, और इस गीत तो बाद मुलाकात होएगी अगले प्रोग्राम दे विच। प्रोग्राम होएगा जी पंजाबी तड़का, ते फिलहाल इंजॉय करदे हां गीत मौला मौला रे।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहे हैं पंजाबी तड़का विद साडे कॉलर्स दे मैसेजेस कॉल्स लगातार आ रही हैं ने ते हुन मैं पढ़न जा रही हूं जी मैसेज भेजन वाले ने रमेश ने जलंधर तो मैसेज भेजा। कहंदे ने कि तेरे हासे चो लभदी ए खुशी मैनू तेरी अखां चो दिसदा जहान सारा जे तू मिले तो सब कुछ मिल जांदा तेरे बिना तो सुना है दिल मेरा। वाओ मतलब बहुत ज़्यादा किसी नाल लगाव इन्हां नूं लगदा है ते बहुत मिस भी कर रहे ने। ते गीत दी फरमाइश इन्हां ने कीती है जी। कहंदे ने कि हरजीत हरमन दी आवाज़ दे विच गीत सुनना है चादर, जरूर प्ले करांगे जी ये गीत। ते दोस्तों जेकर तुसीं भी कॉल करना चाहते हो तो नंबर नोट कर लो 2813-0074 इस नंबर ते कॉल कर सकते हो। ते जेकर थोड़ी कॉल नहीं लगती तो 9855-10-10-27 नंबर ते तुसीं सानूं व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो जी। असीं जरूर पढ़ांगे तुहाडा मैसेज ते तुहाडी फरमाइश भी प्ले कीती जाएगी। ते लो जी हुण इंजॉय करदे हां हरजीत हरमन दी आवाज़ दे विच गीत चादर।

सुन रहे हो जी 102.7 FM रेनबो ते दोस्तों प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो होम स्वीट होम। जिवें कि तुसीं जानदे ही हो दोस्तों कि होम स्वीट होम दे विच असीं गल कर रहे सी कि अपनी डाइटिंग दे जिक्र तुसीं शौकीन हो अपने आप नूं डाइटिंग दा फॉलोअर कहिंदे हो ते कीड़ी कीड़ी डाइट तुसीं इंक्लूड कर सकते हो अपनी रूटीन दे विच की खा सकते हो। दोस्तों ज्वार है ना जिहड़ा विटामिन बी कॉम्पलैक्स का बहुत ही वधिया स्रोत है ते इनू अपनी डाइट विच जरूर शामिल करो जेकर तुसी डाइटिंग कर रहे हो। इस तो इलावा रागी ये भी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है ते इनू भी तुसी अपनी डाइट शामिल कर सकते हो। ते डेली डाइट दे विच प्रोटीन जरूर लेना है, ये तुसी दूध ले सकते हो, दही पनीर अंडा सोयाबीन नट्स दालां ये जरूर शामिल करो क्योंकि प्रोटीन साडी बॉडी नू जरूर चाहिए। ते मार्केट दे विच दोस्तों डाइट दे नाम ते कुछ भी बेचा जा रहा है, इसलिए अखां बंद करके जो मिल रहा है उनू नहीं लेना बल्कि घर डाइट तैयार की जाए। और अपनी डाइट के सिट्रस फ्रूट जिमें कि संतरा है, मौसमी है, अनानास है, अंगूर है, नींबू है, इन्हों जरूर शामिल करो क्योंकि विटामिन सी ते फाइबर इन्होंने भरपूर मात्रा च होंगे तो लंबे समय तक भुख नहीं लगती तो वजन भी साडा कंट्रोल दे विच रहिंदा है। लेकिन जूस एदा एडवाइजेबल है, तुसी जूस पी सकते हो पर उहदी बजाए जेकर तुसी फ्रूट खाते हो तो वह ज़्यादा वधिया रहेगा। फ्रूट नूं तुसी तरजीह देनी है फ्रूट खाना। और ओटमील या जई का सेवन तुसी कर सकते हो इंस्टेंट एनर्जी दे लई, इहदे नाल की है ब्लड शुगर का जिहड़ा लैवल है वह भी नहीं वधदा ते थकान साडी दूर रहिंदी है। जेकर फिजिकल वर्क तुहाडा बहुत ज़्यादा है तो फिर तुसी ओटमील या जई का सेवन कर सकते हो कि इहदे नाल क्योंकि इहदे नाल सानूं फटाफट एनर्जी मिल जाती है। और एक गल होर दोस्तों लौंग भी तुसी जरूर वरतना है क्योंकि जिहड़ा लौंग है वह एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है ते इनू अपने भोजन दे विच जरूर शामिल करना है। दालचीनी भी शामिल करो क्योंकि ये दालचीनी नाल की होंदा कि ब्लड दे विच मौजूद जिहड़ा शुगर लैवल है उहनू ये घट करती है ते डायबिटीज़ की समस्या ना होवे इसलिए दालचीनी का सेवन भी असीं जरूर करना है। सो दोस्तों छोटी छोटी गल्लां का तुसीं ध्यान रखना है जेकर

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम मिड डे मेलेडीज। दोस्तों पहली मुलाकात दी बेचैनी मतलब पहली मुलाकात दी बेचैनी तो ऐसी होंदी है ना कि दिल विच एक अजीब जहा डर होंदा है। मैं की बोलांगा, वो की सोचणगे कि मेरे कपड़े ठीक ने, ये सवाल दिमाग विच घूमते रहते हैं। पर जो सामने आते हैं तो सब कुछ रुक जाता है, लगता है जिवें बदल भी दीवाने हो गए ने। तो चलो जी चलते हैं अगले गीत वाल, जो 1964 की खूबसूरत दोपहर दे वाल तुहानू ले जाएगा। प्रोग्राम चल रहा है जी मिट्टी मेलेडीज़ से, अगला गीत दीवाना हुआ बादल।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी मीठे मेलोडीज। दोस्तों, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। पहली मुलाकात तो पहला साड़ी जिंदगी एक कोरे कागज़ वर्गी होंदी है,

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाकई पहली मुलाकात तो बाद वो इंसान हमेशा ले साडे दिल दे पास हो जाता है, दिल दे करीब हो जाता है। दोस्तों समा बहुत जल्दी लंघ जाता है, खासकर उदो जो असी प्यारियां यादा ते मिठे संगीत दे सफर ते होइए। ते अज दे मिडे मेलोडीज विच बस एना ही। उम्मीद है अज दे इना गीतां ने तुहाडी अपनी पहली मुलाकात दी यादा नूं जरूर ताज़ा कर दिता होएगा। सो इस दे नाल ही मैनूं निवेदिता नूं दिओ इजाजत ते जांदे जांदे 1981 दा एक बहुत ही प्यारा जिहा सवालिया गीत तुहाडे लई छड के जा रही हां, क्या यही प्यार है। सुंदर है ना एफ एम रेनबो। ते इस दे नाल ही मैनूं दिओ इजाजत, बाय बाय।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी दिल आज शायर है। मैं हाँ थोड़ी यार जी दोस्त सुरभी थोड़े नाल। प्रोग्राम विच मैनू मेरे बहुत सारे लिसनर्स जिन्हों मैं शायर कहनी हुनी आ, साडे शायर होना ने शायरी भेजी है जी। शुरुआत कर दी हाँ मैं बिना किसी तेरी तो। जी हाँ, कहंदे ने पुकारोगे प्यार में हमें अगर, पुकारोगे प्यार में हमें अगर तुम, तो हम भी दौड़े चले आएंगे। आपका दिल ही तो है हमारा आशियाना, आपका दिल ही तो है हमारा आशियाना, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। बहुत खूब लिखिया जी, बहुत प्यारा लिखिया जी। जब कोई अपना बन जाता है तो वह साडे लिए सब कुछ होंदा है, साडा आशियाना, साडा घर, साडी जिंदगी। ये लिखिया सी जी बलविंदर सरा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो, उन्होंने सानू भेजी सी। तो अगली शायरी वाल मैं चलती हाँ। कहंदे ने दिल विच वसाइए तेनू एवें दिल चो कढ़दा नहीं मैं, दिल विच वसाया तेनू एवें दिल चो कढ़दा नहीं मैं, प्यार दा बूटा हत्थी लाया फिकर ना कर वड़दा नहीं मैं, तेरे नाल ही रहूं हमेशा, तेरे नाल ही रहूं हमेशा, किसे होर दे नेड़े नहीं लगता मैं, अज वादा करदा हाँ तेरे नाल, अज वादा करदा तेरे नाल, तेनू कल्ली कदे नहीं छड़दा मैं। देखो जदों किसी का साथ मिल जाए जां असीं किसी नाल वादा कर लिए ना, तो उन्हूं कदी छड़ना भी नहीं चाहिए, उस वादे नूं पूरा निभाउणा चाहिए है। तो इस वादे की गल की सी लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार होना ने, और बहुत वधिया लिखिया। इस तों इलावा जी अगली भी शायरी मेरे को पहुँच चुकी है। कहंदे ने कहानी हमारी कुछ यूं ख़त्म हो गई, कहानी हमारी कुछ यूं ख़त्म हो गई, खुशी ना जाने कहाँ दफन हो गई, लिखी होगी मोहब्बत सबके नसीब में, लिखी होगी मोहब्बत सबके नसीब में, हमारी बारी आई तो साही ख़त्म हो गई। मैं क्या जी, ये शाही जड़ी ना दोबारा भरी जा सकती है, बस विश्वास से उम्मीद रखो। इस सानू भेजी सी राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिलियाँ सुल्तानपुर लोधी तो। होर भी बहुत सारिया शायरी सानू पहुँच चुकिया ने, तो चंगा लग रहा जी सारे वारों वारी मैनू अपन शायरियाँ भेज रहे ने। एक होर बोलन जा रही हूँ मैं। कहंदे ने इस दुनिया में जीने की चाहत ना होती, इस दुनिया में जीने की चाहत ना होती, अगर खुदा ने मोहब्बत बनाई ना होती, इस तरह लोग मरने की आरजू ना करते, अगर मोहब्बत में बेवफाई ना होती। आय हाय हाय, ये दुख जड़ा ना बड़िया नू लगा है नहीं जान वाला बेवफाई दा, पर वफा करनी जरूरी है जी प्यार दे विच। ये सानू भेजी सी कुलविंदर टेलर होना ने नियर आदमपुर तो, VPO कंडोला नियर आदमपुर तो सानू भेजी सी। होर भी बहुत सारी शायरी साढ़े को पहुँच रही ने, उन्होंने भी मैं तुहाडे अगे नज़र करांगी, पर नाल दे नाल असी गज़लां दा गीत दा सिलसिला भी जारी रखांगे जी।

कभी वो रूठ जाती है, कभी वो मान जाती है, कभी वो रूठ जाती है, कभी वो मान जाती है, हमारी हर खुशी हर दर्द को पहचान जाती है। वो एक प्यारी सी गुड़िया है, भले वो दूर है मुझसे, वो एक प्यारी सी गुड़िया है, भले वो दूर है मुझसे, मेरी आवाज़ से ही हाल मेरा जान जाती है। ए सानू मिठी जी, स्वीट जी, प्यारी जी, जो शायरी भेजी सी जी सुभाष चंद्र वत्स गिद्दड़बाहा ने, ये बड़ी अच्छी उन्होंने भेजी है। एक प्यार साफ जड़ा नज़र आ रहा है। देखो आज मैंने बड़ा चंगा लग रहा है क्योंकि आज मैंने ऑलमोस्ट जिन्हें भी शायरी आ रही है प्यार दे उत्ते आ रही हैं, असी एक प्यार जड़ा है उन्हों की कहें आप वंड रहे हैं, है ना, प्रोग्राम के थ्रू। तो अज सारे तुम बड़ी अच्छी अच्छी शायरी मैं भेज रहे हो, बड़ा चंगा लग रहा है। बहुत सोहनी सुभाष चंद्र उन्होंने भी सानू शायरी भेजी। इस अगली शायरी वाल चलते हैं। कहते ने गुलाब, माफ़ करना दोबारा कहनी हाँ जी, कहते ने गुलाब की तरह तू भी खास है, गुलाब की तरह तू भी खास है, मेरे दिल में बस तेरा ही एहसास है। आगे इन्होंने कुछ लिखा नहीं, बस मेरी यही तक ही शायरी का एहसास है। लो जी, दो लाइना मैं अपने वालों दे बोल दी हैं, बट ये दो लाइना सानू भेजिया सी, पर जिन्होंने भेजिया सी उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा ये नहीं मैनू पता। जे उन्होंने शायरी सुन ली होगी तो हूँ उन्होंने शायद याद आ गया होगा कि वो नाम लिखना भुल गए ने, या फिर जानबूझ के नाम नहीं भेजे कि पता ना लग जाए ये गुलाबा वाली शायरी सानू कौन भेज रहा है। लो जी, अगले सफ़र नू अगे बताते हुए अगली शायरी वाल चलते हैं। कहते ने साडियां किस्मतां च लिखिया होवे ना होवे, साडियां किस्मतां च लिखिया होवे ना होवे, पर मेरे दिल विच तू हमेशा मेरा हमसफ़र रहे। कदरां उत्ते नसीब लिखिया जांदा है, कदरां उत्ते नसीब लिखिया जांदा है, पर साथ तां दिलां दे वादियां नाल निभाया जांदा है। देखो जिंदगी कई बार सानू कोई नए भी मिलता, पर इहदा मतलब ये नहीं असीं अपने दिल विच नफरत नू पैदा कर लिए। असीं एक प्यार नू हमेशा अपने दिल विच भी रख सकते हैं हमेशा।

यूं ही नहीं हम तुमसे मिलने के लिए बेताब, यूं ही नहीं हम तुमसे मिलने के लिए बेताब, तू पहला ऐसा है जिसे दिल ने अपना कहा है। भीड़ तो बहुत है इस दुनिया में, भीड़ तो बहुत है इस दुनिया में हमारे चाहने वालों की, पर इस चाहत के समुंदर में सिर्फ अक्स तेरा है।

0: ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਆਰ ਜੇ ਸੁਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ 2:30 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੰਗ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 3:00 ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 4:00 ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੋ ਜਲੰਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੁਰਬੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।
1: स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
1: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहले जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं 6वीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का

0: नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा, जार अब छोटा।

0: बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे, सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया।
6: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
6: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
6: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
6: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं।

0: खेलने देंगे।
1: अप्पू?
2: उसके चेहरे पर चॉक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
1: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
2: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
2: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
2: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
3: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
3: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
3: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला,
3: वो कंचा।
1: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
3: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
3: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ,
3: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
3: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
3: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
3: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
3: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
3: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
3: हाँ।
1: बेवकूफ, रेल

0: गाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
1: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
1: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
0: लाओ।
1: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
1: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
2: ओए,
1: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
1: वो बेंच से उतरा।
0: किधर?
1: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
0: फीस मत देना,
1: मास्टर ने कहा। वो झिझकता रहा।
0: ऑन द बेंच।
1: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
0: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
1: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
1: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
2: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
1: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
1: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
1: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी।

0: वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने

0: रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
1: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
2: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
1: दे दो।
2: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
1: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
1: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
3: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
4: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारे

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम इस प्रोग्राम में रोज रोज नए नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। भारतीय आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, जिक्र किया जाता है। जी हाँ, दिनचर्या अर्थात दैनिक जीवन की स्वस्थ आदतें हैं, खान पान है, और ऋतुचर्या यानी कि मौसम के अनुसार अपने जीवन शैली और खान पान में आवश्यक परिवर्तन। साथियों, कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को संतुलित रखे तो वो न केवल कई बीमारियों से बच सकता है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रह सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं, मानते हैं, है ना। तो आज रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए और आपके द्वारा सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी को। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डायरेक्टर हैं और आपको आयुर्वेद के विषय में, खान पान के विषय में, दिनचर्या के विषय में, ऋतुचर्या के विषय में पिछले 30 वर्षों का एक लंबा और गहरा अनुभव है। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
1: तो साथियों, जो आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफ स्टाइल। दिनचर्या, ऋतुचर्या, दैनिक और मौसमी जीवन शैली, इस विषय पर आप अभी इसी वक्त हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो अभी इसी वक्त डायल कीजिए हमारा फोन नंबर 2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। और इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड है 011011, यानी कि एक बार फिर से मैं अपना नंबर दोहराई देता हूं, 2342-1080 और दूसरा फोन नंबर 2342-1082। इन दोनों नंबर से पहले आप दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए 9868107070। तो चलिए, हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट, हमारे वैद्य जी इंतजार कर रहे हैं। और तब तक आपकी ओर से कुछ सवाल और मेरे मन में भी कुछ उत्सुकता है, वो भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं और आपके साथ कुछ जानकारियां साझा कर लेते हैं। तो डॉक्टर, ये जो ऋतुचर्या और दिनचर्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका कितना महत्व है आयुर्वेद में?
2: धन्यवाद कमलेश जी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिनचर्या और ऋतुचर्या हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए, आपकी रीजनल और सीजनल वेरिएशन के हिसाब से खान पान और रहन सहन इम्पॉर्टेंट होता है हमारा
1: जी।
2: अब हम पहाड़ में रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, तो हम समुद्र की जीवन जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जब समुद्र के किनारे रहते हैं तो समुद्र वाली जिंदगी जीनी पड़ती है, पहाड़ पर रहते हैं तो पहाड़ वाली जिंदगी जीनी पड़ती है।
1: अलग अलग टाइप की,
2: अलग अलग है। इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ का भी होता है। तो इसलिए दिनचर्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम रात को कब सोते हैं, कब उठते हैं और क्या क्या करते हैं। आजकल के जो जिंदगी है हमारी, जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त रूप से आ चुकी है, तो हमारा ना सोने का टाइम है, ना हमारा जागने का टाइम है, ना हमारा खाने का टाइम है। और ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसके बिना आप जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनसे बच नहीं सकते।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि भागम भाग की ज़िंदगी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी ज़्यादा हो गई है।
2: बिल्कुल बिल्कुल हो गई है, और उसी में हमको मैनेज करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसको हमें वायर्ड भी नहीं कह सकते
1: जी।
2: तो इसलिए
1: वो एक प्रकार से हमारे दिनचर्या में, ऋतुचर्या में और लाइफ स्टाइल में ये शामिल हो गया है।
2: बिल्कुल।
1: तो तकनीकी का इस्तेमाल करना भी चाहिए, लेकिन संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी देखिए, इसी तकनीकी के जरिए ही हमारे पास कुछ फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं
2: जी।
1: हेलो
3: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सबसे पहले तो हमारे भारत के विद्वान चिकित्सक प्रजापति जी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद सर।
0: और हमारे आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या का, तो मेरा ये पूछना है कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में हमें कौन कौन से आहार लेने चाहिए, कौन कौन सा लेने चाहिए, वैसे विस्तार से बताएं। धन्यवाद
2: जी। आपने अपना नाम नहीं बताया, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये नहीं बताया।
0: जी, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
2: जी
1: धन्यवाद गौतम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ग्रीष्म ऋतु चल रही है और चूंकि हम सभी जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में अग्नि हमारी कमज़ोर होती है, तो खान पान में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जनरली क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु है तो हम लोग ठंडा पानी, ठंडी बर्फ़, कुल्फ़ी और ये सब चीज़ें खाते रहते हैं, जबकि खाने के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि खाना जो भी खाना है हमको गर्म गर्म खाना है, फ्रेश बना हुआ खाना खाना है। और ये सब चीज़ें नहीं होने से आजकल बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस समय ध्यान रखें, लू लपट अगर लगने वाली सिचुएशन है तो उससे अपने आप को प्रिवेंटिव एक्शन ले, क्योंकि हमने देखा है बचपन में कि हमारे दादाजी भी लू लपट में काम करते थे, जाते थे, लेकिन वो अपने आप को लपेटते थे, कपड़ों से ढक के रखते थे, पानी की बोतल रखते थे। पानी की बोतल उस समय होती थी नहीं थी, तो लोग अपना सत्तू रखते थे और सत्तू घोल घोल के पीते रहते थे वो पानी में। तो ये जो कुछ हमारी रेजिम डाइट बताई गई है उस समय के हिसाब से वो बहुत अच्छी है। एक पुदीना, पुदीना का अर्क, पुदीना सत्व, पुदीना हरा, पुदीन हरे के नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप देखते होंगे ग्रीष्म ऋतु में आम का पन्ना बहुत पॉपुलर है और अब हम लोगों को नहीं मिलता है, अब हम लोगों को रेडीमेड कंडीशन में पीना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए उस समय कही गई थी और उनको आज हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तो ये देखेंगे आपकी जितनी भी ग्रीष्म ऋतु की चीज़ें हैं तो उसमें हमें खाने पर बहुत ध्यान रखना है। सुबह उठ के जनरली क्या करते हैं लोग, कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह उठ के अपने को फ्रेश होना है, आराम से बैठना है, थोड़ा पानी पीना है और पानी गुनगुना पिए सुबह, जिससे पेट साफ हो जाए। साफ होने के बाद थोड़ा टहलें, गर्मी के दिन है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, और हमको वो टहलने से ही बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। कई लोगों को बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो इसलिए उनको पानी पीना ज़रूरी है, और पानी पी के टहलते हैं तो वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। साथ में खाने का जब भी रखें आप तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, जितनी भूख है डकार मार के पूरा पानी पी लेना खाना, ये थोड़ा कंट्राइंडिकेशन होता है इसके लिए, तो थोड़ा सा कम खाना खाएं और थोड़ा पानी का जो पीने का है शेड्यूल, जैसे खाना खा के तुरंत हम लोग पानी पीते हैं डेढ़ डेढ़ दो दो गिलास, वो नहीं होना चाहिए। हमको थोड़ा पानी पीना है, अभी थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद फिर पानी पीना है, तो वो हमको मेंटेन करके रखना है। तो हमें नहीं लगता है कि गर्मी में कोई प्रॉब्लम होती है, गर्मी ऋतु हम लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी खेले हैं गर्मी की छुट्टियों में जाके, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु सबसे अच्छी ऋतु वैसे मानी जाती है रहन सहन के लिए, लेकिन खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।
2: प्रोफेसर साहब, आपने यहाँ पर दो तीन बातें बताई और वो भी गर्मी ऋतु को लेकर के, खान पान को लेकर के, तो मैं गौर कर रहा था कि आपने कहा कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं और सत्तू का, जो भी पेय पदार्थ हैं उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया तो आपने ये भी बताया कि आज तकनीकी का युग है और इसमें कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि आजकल तो हर गाँव, घर, शहर, जगह, हर किसी के पास रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि लोग कहीं गर्मी से, मतलब तपती धूप से वापस आ करके तुरंत ही रेफ्रिजरेटर खोल करके ठंडा ठंडा पानी पी जाते हैं, कहाँ
1: नहीं
2: तक?
1: ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने भी बचपन में किया है ऐसा,
2: उससे क्या नुकसान होता है?
1: लेकिन तुरंत क्या होता है, जो हम खाए पिए हैं वो और अपच में चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के ऋतु में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं और कभी भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ हमें थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। घड़े का पानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घड़े का पानी का एक टेम्परेचर होता है, वो उससे ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। हम लोग तो गांव में कुएं के पानी में पीते थे, कुएं के पानी भी ठंडे होते थे, तो वहाँ प्रॉब्लम, नेचुरल वाटर जहाँ आप पियेंगे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा है, फ्रिज से निकाल के तुरंत पानी या कोई भी चीज़ तुरंत नहीं खानी चाहिए, थोड़ा देर उसको रखना चाहिए, उसको रूम टेम्परेचर तक थोड़ा ले लिया के, जो उसका माइनस डिग्री का टेम्परेचर, उसको थोड़ा ऊपर लाके फिर

0: ने नॉर्मल टेम्परेचर पे खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी
1: जी। प्रोफेसर साहब, अभी ये तो हुई ठंडे चीज़ की बात है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी दिनचर्या में, हम इंडियंस, हम भारतीयों के दिनचर्या में और लगभग सबके, चाय का भी इस्तेमाल किया जाता है। Yes. गर्म चाय, गर्मी में भी गर्म चाय ज़रूर पीते हैं। ये लाभदायक है या नुकसानदायक है?
0: नहीं, अब ये चीज़ें लाभदायक तो नहीं होती हैं, लेकिन हम लोगों की आदत सी पड़ चुकी है। और जब तक चाय न मिले तब तक आंख नहीं खुलती है।
1: एनर्जी
0: ऐसी कंडीशन भी हो चुकी है
1: जी,
0: क्यों आदतें जो पड़ जाती हैं वो आदतें साध्य कंडीशन में चली जाती हैं, तो उसका ये है कि लिमिटेड यूज होना चाहिए
1: जी।
0: हम भी पहले ऐसे ही करते थे, 12-12, 13-13 चाय पी जाते थे, अब नहीं पीते हैं क्योंकि अब पता चल गया धीरे धीरे तो छूट गई।
1: गर्मियों के मौसम में कुछ कम कर देने चाहिए,
0: कम करके रखनी चाहिए, क्वांटिटी घटा लेनी चाहिए और बार बार चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय मंदाग्नि का एक कारण होती है
1: जी,
0: डाइजेशन को घटा देती है चाय, तो इसलिए चाय की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। आदत छूट सकती हो तो छोड़ दें, उसकी जगह पर अपने जो सिंपल पेय पदार्थ हैं वो पिए, अपना गर्म पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दें, थोड़ा ही जीरा डाल दें, थोड़ा अजवाइन डाल दें, थोड़ा दालचीनी डाल दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
1: जी। जी,
0: ग्रीन टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो हमें एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको निकालने के काम होती है, तो उबाल के अदरक डाल के, काली मिर्च डाल के चाय पीने की जगह अगर हम सिंपल ग्रीन टी का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं है तो गर्म पानी का प्रयोग करें
1: जी।
0: और चाय की आदत छोड़ें अब हम लोग, पहले तो क्या था, ब्रिटिश ने हमारे लगा दिया है उसको और हम लोग की आदतें खराब कर दी हैं सारी जी।
1: प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार जी, वैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपने एक और बात बताई, आम के पन्ने की बात की
0: जी।
1: तो यहाँ पर वैसे जो शहर हैं वहाँ पर चूल्हे की कमी तो होती है, मतलब चूल्हे यानी कि लकड़ी की चूल्हे की बात कर रहा हूँ मैं, तो आम का पन्ना किस प्रकार बनाना चाहिए, लकड़ी के चूल्हे में बनाया हुआ ठीक होता है या फिर बॉयल किया हुआ?
0: नहीं, पहले ऐसा था कि पहले ये हमारे पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग कंडे में लकड़ी के आग पे उसको भून लिया करते थे। अब तो वो सुविधा नहीं है, सभी के घर में माइक्रोवेव है, लोग भून सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में उबाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट इतना है कि उसका जो खट्टापन है, उसका जो गुरु आहार है, उसको हमें लघु में कन्वर्ट करना है
1: जी।
0: तो जब हम उबालते हैं और उसको करते हैं तो उससे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी तरीके से उबाल के या भून के, ये कोई ज़रूरी नहीं कि लकड़ी बदल, क्योंकि अब वो नहीं हो सकता
1: जी,
0: जो कंसेप्ट बदल चुके हैं उसको नहीं हम ला सकते हैं,
1: मतलब जैसे सुविधा हो वैसे कर लेना।
0: हाँ, वैसा करना, लेकिन आज भी देखिए आप भी झारखंड से हैं, उधर से हम लोगों के यहाँ दाल बाटी चूरमा बनता है, राजस्थान में अपने तरफ बनता है बैगन का भरता और लिट्टी बाटी चोखा बनता है, तो वो लिट्टी बाटी चोखा माइक्रोवेव में जो बनेगा उसका वो टेस्ट नहीं आता है, जो गोबर की कंडों पे या लकड़ी के कोयलों पे जो बनता है उसका जो टेस्ट आता है वो अलग होता है,
1: यानी कि नेचुरल नहीं,
0: नेचुरल तो नेचुरल ही है
1: जी। जी, तो हमारे पास वैसे अब और भी क्वेश्चंस मन में आते हैं, आते रहेंगे, उठते रहेंगे और हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना सवाल पूछूं, उससे पहले अपने जो कुछ श्रोता हैं वो लगातार हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज रहे हैं, और अपने श्रोताओं को हम बता दें, एक बार फिर से याद दिला दें कि आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 2342-1080 और दूसरा फ़ोन नंबर है 2342-1082, और इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 ज़रूर डायल कीजिएगा। और हमारे पास इस वक्त व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल आए हैं, उनको हम एक एक करके लेते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए आप सब जिन्होंने अभी तक अपने सवाल नहीं पूछे हैं या फिर कुछ परेशानी हो रही है नंबर के लिए, तो नोट कर लीजिए 9868107070, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेज सकते हैं। तो हमारे पास ये जो मैसेज आया हुआ ये है, ये कहते हैं कि आई एम सागर, यानी ये सागर हैं और इनकी उम्र है 26 साल की, ये हैं विजयपुरा कर्नाटका से, कहते हैं कि आई हैव टू क्वेश्चंस इन टूडेज बिजी वर्ल्ड दैट व्हाट लाइफस्टाइल वी कैन अडॉप्ट आफ्टर फ्रॉम हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज।
0: क्या नाम बताया ना?
1: इन्होंने अपना नाम लिखा है सागर।
0: थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन, नो डाउट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन टूडेज लाइफ वी जनरली, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा खान पान इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितना खाएं उतना हम पचाएं, दिस इज़ द वन कॉन्सेप्ट कि जितना हम खाएं उतना इजीली पच जाए।

0: और उसके लिए करना क्या है, आपको खाने की क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, आपको अपनी नींद के ऊपर ध्यान रखना है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे आजकल दो दो बजे तक पढ़ते रहते हैं और सुबह आठ आठ बजे तक सोते रहते हैं, तो इसलिए विटामिन ए ई डी के की कमी आ गई है सभी के अंदर। तो ये नहीं होना चाहिए, हमको रात को 10 बजे या 11 बजे जब भी हैं सो जाएं, 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए एट ए स्टेज। और बच्चे जो थक जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, बाहर घूमते हैं, उनके में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। क्योंकि हम लोगों ने भी अपने बचपन लाइफ में देखा है कि दिन भर जब खेलते थे, चाहे धूप हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, खेल के जब घर पहुंचते तो सीधे सो ही जाते थे, खाने के भी नहीं पूछते थे।
1: तो यानी कि बाहर घूमना और खेलना ज़रूरी है,
0: फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है
1: जी।
0: और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सुबह जल्दी उठना
1: जी।
0: तो जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप शाम को समय से सोएंगे। तो 10 से 11 के बीच में अगर आप सो जाते हैं तो सुबह 6 से 7 के बीच में अपने आप नींद खुल जाती है
1: जी। 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है।
0: 7 घंटे तो नींद पूरी हो गई तो बॉडी क्या होती है, सोते समय डिटॉक्स करती है। आपको ध्यान नहीं होगा, हमारे बॉडी के जो हार्मोन, हमको लगता है कि सब सो जाते हैं, तो इंटरनल जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, ये सब उस समय एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये बॉडी में जो दिन भर के जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको निकालने का, नेचुरल रूप में निकालने का काम करती है। तो हमें ये रेस्ट देना जरूरी है उन ऑर्गन्स को
1: जी। डॉक्टर साहब, ये और इनका ही ये दूसरा प्रश्न है, ये है कि आई डोंट गेट इनफ मोटिवेशन टू डू एक्सरसाइज, व्हाट कैन बी डन?
0: व्हाई? आप जितने भी प्लेयर्स हैं उनको देखिए, वो खेलते हैं, मोटिवेशन तो अपने घर से ही मिलता है जनरली। कि जब हम, अब हम इस एज में, आपकी एज में इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती बेटा, इस एज में आपको लगता है आप लोग यू आर इन ग्रोइंग स्टेज, लेकिन जैसे ही हम 40 पार करते हैं और हमने अपने बॉडी को एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं रखा, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप घिरने लगती हैं। तो इसलिए हमें बॉडी के हर पार्ट को इस तरह से मोटिवेट, अपने आप को इस तरह से रखना है एक्सरसाइज करके, कि हमारा हर अंग, एक एक अंग हमारा थोड़ा एक्टिवेट मोड में रहे। और जिस अंग का कोई काम नहीं होता है, वो अपने आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए। घर में खड़े होकर जॉगिंग कर लीजिए, पश्चिमोत्तासन कर लीजिए, और आजकल कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आप सूर्य नमस्कार की जो 12 मुद्राएं हैं, उसमें सारे ऑर्गन्स की एक्सरसाइज आ जाती है। और ये बहुत ऑप्शन है कि अगर उगते हुए सूरज के सामने हमने किया तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज का भी इम्पोर्टेंट मिलता है, हमें विटामिन डी भी मिल जाती है, तो हमको सब कुछ मिल जाता है।
1: कोशिश करें कि तो खुले में करें,
0: खुले में करें
1: जी,
0: थोड़ा सा इस जहाँ सूर्य की रोशनी हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वहाँ पे अपने को करना चाहिए
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, आप हमसे जुड़े और हमारे साथ आप फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। आइए हम उनसे पहले बात कर लेते हैं, उनकी क्या समस्या है पूछ लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, बताएं आपका नाम, बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं।
2: मैं राजेंद्र बोल रहा सर, ये नॉर्थ दिल्ली से। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मेरी एज 75 है ये सर, जीभ में दरार सी पड़ जाती है जो मिर्च वगैरह नहीं खाई जाती, और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या कारण हो सकता है?
0: सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैरों में अगर सूजन आ रही है और जीभ में दबार पड़ रही है, तो थोड़ा सा अपने को ब्लड के पैरामीटर्स टेस्ट करने पड़ेंगे। वैसे तो सिंपल है कि जनरली अगर आपको चमेली की पत्ती मिल जाए कहीं से, तो 2-3 चमेली की पत्ती चबा के देख लीजिए, अगर जीभ की दरार ठीक हो जाती तो भी डाइजेशन से रिलेटेड मैटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैरों में भी स्वेलिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिम्टम्स आते हैं हमारे इस एज में। तो इसलिए आप प्लीज़ कंसल्ट करें किसी न किसी डॉक्टर को, और दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं
1: जी। तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए, टेस्ट कराइए, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। और इस एज में इस प्रकार की समस्या डॉक्टर साहब आ जाती है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी उम्र भी 75 साल की है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, और बस आगे बढ़ते जाना है। जो भी जो नियम है, जो दिनचर्या है, उसे पूरी करते रहना है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: इस छोटे से मनोरंजन के बाद यानी कि गाने के बाद में एक बार फिर से हम लौट कर आ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, और आपको एक लंबा अनुभव है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डायरेक्टर के पद पर हैं और आपको 30 वर्षों का एक लंबा अनुभव है, और आप बहुत ही खूबसूरती के साथ में अपने जो श्रोता हैं उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें कि हमारा जो फ़ोन नंबर है एक बार फिर से दोहराए देते हैं, 0112342 1080, और दूसरा फ़ोन नंबर है 2342 1082। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें कॉल मैसेज भेज सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 9868107070। तो चलिए, वैसे हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत सारे कॉल्स हैं, लेकिन पहले यानी कि मैसेज हैं और कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं, पहले हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका सवाल लेते हैं, उसके बाद में व्हाट्सएप मैसेज। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपके?
2: पहले तो एंकर सर और डॉक्टर को नमस्कार।
1: जी राजेंद्र जी, आपको भी नमस्कार।
2: हाँ जी, मेरे सवाल है और एक है, जरा उसे दूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी
1: जी।
2: पहला सवाल तो मेरा डॉक्टर साहब की, मुझे ना पित्त प्रवृत्ति है और श्वसन एलर्जी भी है, और अभी आप कह रहे हैं कि गर्म खाना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, और मेरी ना वाइट स्किन जैसे अंग्रेजों की होती है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल कि पुदीने के क्या फायदे होते हैं, जरा
1: उसे। आपकी आवाज राजेंद्र जी थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी सी समझ में नहीं आई।
2: हमारी है
1: जी, अब जी बताएं।
2: हाँ जी, मैं दोनों सवाल फिर से आपको, मेरे सवाल आप तक पहुंच गए।
1: जी जी जी जी, दूसरे सवाल आपने क्या पूछा था?
2: हाँ, पहला सवाल तो मेरा ये था कि मेरे को ना पित्त प्रवृत्ति है, पित्त।
1: जी जी, पित्त की। जी
2: हाँ जी, और व्हाइट मेरी स्किन और श्वसन एलर्जी भी है, तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, और डॉक्टर साहब ने हम खाना चाहिए गर्म, अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? पहला सवाल मेरा ये।
1: जी।
2: दूसरा कि पुदीने के फायदे विस्तार समझाए,
1: इससे
2: क्या फायदे होते हैं विस्तार से। अच्छा, तीसरा

0: मेरा ये है कि जो है ये जैसे अभी आपने कहा कि ये कई लोग होते हैं कि आपने कहा 6-7 घंटे सोना चाहिए, पर कई लोग ऐसे होते हैं मतलब 3 घंटे सोते हैं तभी उनकी पूरी आवाज़ें से मोदी साहब ही है, 3 घंटे सोते नहीं पूरी पूरी आवाज़ें हिंदुस्तानी सीएम साहब जो है, तो इसकी क्या वजह होती है, इसके हमें क्या करना है नींद इम्प्रूव करने के लिए।
1: जी
0: और चौथा चौथा और मेरा सवाल ये है कि मैंने सुना है कि कई लोग में चाहिए अगर आप खाना खाने से पहले 3 से 6 लाते खाएं और खाना खाने के बाद घूसे खाएं 3 से 6, तो भूख भी जबरदस्त लगेगी, खाना भी अच्छा खासा हजम होता है, कहाँ तक सही है, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: जी राजेंद्र जी, जी एक एक करके सवालों का जवाब देंगे। जी
2: थैंक यू राजन जी, बहुत बढ़िया का क्वेश्चन किया। आपकी अगर पितृ प्रकृति है तो आपको ध्यान रखना है, हमने ये नहीं खाना गरम गरम खाने की बात की है, तो खाना ठंडा करके नहीं खाने के लिए पितृ प्रकृति वालों को लिए भी बोला गया है। आपको सुकोष्ण वाटर लेना है, सुकोष्ण जल लेना है पीने के लिए। सुकोष्ण का मतलब होता है जिस ऋतु में है जैसा है उसके हिसाब से लेना है। आप अगर ग्रीष्म ऋतु में हैं तो ये नहीं है कि आपको एकदम ठंडा पानी पीना है, तो उसको एक टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर पीजिए। और पित्त प्रकृति वालों में पित्त की दुष्टि अगर होती है तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ खाने पीने में तो खान पान बहुत अच्छे से पाचन हो जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा भी गुनगुना पानी पियेंगे तो आपको पाचन बढ़ जाएगा, आपका खान पान की जो समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उससे आप परेशान न हों। और यह है कि फ्रेश बना हुआ खाना खाना है, मेरा कहने का ऑब्जेक्ट ये था कि गरम गरम खाने का मतलब कि आपको फ्रेश बना हुआ खाना खाना है। आजकल क्या होता है कि लोग बना के फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रख देते हैं फिर उसका जब ज़रूरत होती है तो निकाल के खा लेते हैं। ये फ्रोजन फूड का कंसेप्ट चल चुका है आजकल, आपने देखा नहीं होगा, हम तो देख रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं और सभी जगह फ्रोजन फ्रूट्स सप्लाई हो रहे हैं। वो जाते हैं यहाँ से और उसके बाद वो डीप फ्रिज में रखे रहते हैं, जैसे ऑर्डर होता है उनको निकाल के तुरंत गर्म करके खिलाने के लिए दे दिया जाता है, तो उसकी वो क्वालिटी नहीं होती है जो अपने फ्रेश गबने हुए खाने की क्वालिटी है। इसलिए कोशिश करें कि जब खाना बन रहा हो बनने के आधे घंटे के अंदर ही उसको कंज्यूम करें, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, खाने के साथ ये ध्यान रखना है, हमने बार बार कहा कि पेट भर के डकार मार के नहीं खाना है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो भूख है जितना पेट है उसका 1/2 खाना है, 1/3 खाली रखना है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो जिससे कि डाइजेशन सही होगा और ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। और आपने बोला कि सन एनर्जी है, सोलर से प्रॉब्लम हो रही है उनको
1: जी,
2: तो पितृ प्रधान आपका है चूँकि इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको वहाँ प्रोटेक्शन ही रखना है और पित्त सामक योगों का प्रयोग करना है। आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए, आपको प्रवाल पंचामत, प्रवाल पिष्टी या ऐसी चीज़ें देंगे, साथ में महामंजिष्ठा जी क्वाथ देंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा ये था, आपने पुदीने के बारे में पूछा था, पुदीने का आपको पुदीने की कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी है, पुदीने का ठंडी चीज़ें आपको लेनी है। पुदीना अर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पुदीना सत्व बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो इस तरह के जब कभी इनडाइजेशन की कंडीशन होती है तब वहाँ पे वो हमको दोनों तरह से फ़ायदा देता है। आपने देखा होगा कि जब हमारा हेडेक होने लगता है तो हम बाम लगाते हैं, तो बाम क्या करता है, बाम को दर्द को तो निकालता नहीं है, बाम आपके ब्रेन के सेंसेस को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके आपको नींद आ जाती है और वो सर दर्द ठीक हो जाता है। तो पुदीना के भी वही काम है, इस तरीके से वोलेटाइल ऑयल कंटेंट जितने होते हैं उसमें वो तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और वो एक्टिवेट करते हैं सिस्टम को जाके, जिससे कि हमको वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। आपने नींद की बात की, मोदी जी का एग्जांपल दिया आपने, मोदी जी जैसे कितने लोग हैं इस दुनिया में, बहुत कम लोग हैं, ऐसे हमारे जितने भी साधु संत सन्यासी होते थे उनकी भी यही कंडीशन है, वो 10 बजे सोते हैं और 1 बजे उठ जाते हैं, दिनचर्या उनकी 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये आदत डालने की बात है। मोदी जी को आप आज देख रहे हैं, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, और उनकी वो आदतें शुरू से हैं, रात को 10 बजे सो जाना, अभी तो सो नहीं पाते हैं वो, अभी तो उनके साथ वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाते हैं वो, 4 बजे उठ के सारे अपनी एक्सरसाइज करना, योग, क्यों योग, योग का इतना प्रचार प्रसार हमारे ब्रांड एम्बेसडर योग के लिए कौन है?

0: योगी मोदी जी हैं
1: जी,
0: मोदी जी खुद करते हैं उन चीज़ों को, और खुद करके उन्होंने प्रूव किया है कि ये ऐसा हो सकता है। तो खान पान, उनका खाना आपने देखा है कितना है, उनके खाने में दो कौर होते हैं, पानी पीते हैं और वो सब ठीक रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अडॉप्टेबिलिटी होती है, साध्यता होती है। ये हमारे साधु संन्यासी, हमारे ऋषि मुनि ये सब किया करते थे, और उनकी इसलिए लाइफ 100-100 साल तक रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इन चीज़ों को हम अगर प्रैक्टिस में डालते हैं और अपने लिए साध्य कर लेते हैं तो इन चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आजकल 6 घंटे की नींद कंपलसरी है, क्योंकि हम इतने सारे फालतू के काम करते हैं, फालतू का खाते हैं, खान पान बदल गया है पूरा, इतने प्रिजर्वेटिव वाले मटेरियल खा रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए तो हमको बॉडी को रेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, हम 3 घंटे और 4 घंटे सो के भी काम करते हैं, हम लोग को करना ही पड़ता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। सो आप इस बातों का ध्यान रखें प्लीज़। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, थैंक यू वेरी मच
1: जी। हमारे पास एक फ़ोन कॉल भी आया हुआ है, और जी लगता है कि कट गई, ये फ़ोन कॉल कट गया है, तो हम एक व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं। और ये व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से हैं। इनका कहना है कि क्या विंटर में दही खाना चाहिए, और दूध से पेट में गैस हो जाती है, क्या करें?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन सरोज जी। आप लोगों ने बड़े बूढ़ों से कभी कभी सुना होगा कि ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खाया जाता है, लेकिन हम उल्टी परंपरा में चलते हैं। शरद ऋतु में दही का इंडिकेशन है, शरद ऋतु में दही खाना चाहिए। क्यों? हमें जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोबैक्टीरियम चाहिए होते हैं वो उस समय दही में सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ कहने का विधान किया गया है।
1: हम उल्टा चल रहे हैं
0: और हम लोग उल्टा चलते हैं, सोचते हैं कि गर्मी में दही खा लेते हैं तो आराम है, दही में गर्मी में नहीं खाना चाहिए, ये हमारे क्लासिकल लिटरेचर यही बोलता है। और खाना भी है तो अब आप देखिए कि हम लोग जो है दही लस्सी पीने वाले काम, लस्सी पीने का काम कब करते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में,
1: वो भी दिन में, दोपहर में,
0: और वो भी दिन में दोपहर कहीं भी जाते हैं, गर्मी लगती है, चलो लस्सी पी लेते हैं
1: जी जी।
0: तो ये क्या है कि उसमें जो बैसिलस है, बैक्टीरिया है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए वो सब चीज़ें हमारे लिए, लेकिन क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम दही कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जिन लोगों को संधिवात है, आम बात है, आम से जुड़ी बीमारियां हैं, उनको दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही क्या, उनको किसी भी खट्टी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम है, अरे टमाटर है, नींबू है, दही है। अब बहुत सारे लोग, हम लोग कहते हैं कि हम लोग दही रोटी खा खा के, दही पराठे खा खा के तो बड़े हुए हैं और अपने अभी दही छूटा हुआ है इस समय। तो इसलिए प्रिकॉशन लेके हमको खाना है। अब आप चले जाइए गुजरात में, तो वहाँ पे बिना छाछ के तो खाना होता ही नहीं है, लेकिन वो छाछ कैसे बनती है आपको ये देखनी पड़ेगी। वहाँ एक पार्ट छाछ, एक पार्ट दही, और उसमें 4 भाग गर्म पानी मिला के उसको बनाते हैं।
1: तरीका अलग है,
0: वो अलग अलग है। तो वो चीज़ वो पानी नहीं पीते फिर वो लोग, फिर वो छाछ पीते हैं, और वो छाछ फिर वो वहाँ डाइजेशन में हेल्प करती है। उसमें नमक, काला मिर्च और ये जीरा डाल के बनाते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि रीजनल और सीजनल वेरिएशन, बार बार हम कह रहे हैं रीजनल और सीजनल वेरिएशन
1: जी।
0: दही अगर आप पहाड़ में बैठ के खाएंगे शरद ऋतु में तो गला पकड़ लेगा। तो खाना कैसे है, वहाँ पे गर्म गर्म रोटी में हमको हिंगवास्टक डाल के खाना है तो वो खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं
1: जी। और इनका एक और प्रश्न था कि
0: दूध,
1: जी
0: जी, दूध से बहुत से लोगों को एलर्जी हो रही है आजकल, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डेयरी मिल्क है, आप कभी जाएं अपने घर में अगर अपनी गाय है, अपनी भैंस है, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन डेयरी मिल्क जितने भी है वहाँ पे कुछ भी करिए आप, पाश्चराइजेशन करना पड़ता है, उनको प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो अगर डेयरी का मिल्क है तो पीने में आप ध्यान रखिए। अगर अपने घर की गाय है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है दूध को अगेन डाइल्यूट करना है हमको, पानी थोड़ा मिला के डाइल्यूट करिए। बहुत आपने अगर भैंस का दूध लिया तो गाढ़ा होता है, देखते हैं आप, गाय का दूध होता है तो पतला होता है, तो गाय के दूध में प्रॉब्लम नहीं आती, भैंस के दूध में प्रॉब्लम आती है।
1: तो ये जो दूध है इसे कब पीना चाहिए, दिन में पीना चाहिए या रात में पीना चाहिए या कब पीना चाहिए?
0: हम लोग के यहाँ देखिए बच्चों को तो हम ये कहते हैं लगातार, क्योंकि वहाँ कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो हम उनको दूध सुबह शाम दोनों टाइम पिलाते हैं।

0: बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जो रहा करते थे, जो हम लोगों ने बचपन में शुरू किया है, तो सुबह दूध के साथ रोटी खाते थे और रात को खाना खाने के बाद दूध जरूर पीते थे
1: जी।
0: लेकिन वो दूध बार बार कह रहे हैं कि अपना होता था और हम उसको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खिलाते थे जो चीज़ें नुकसान करने वाली हों।
1: यानी कि दूध जो है कभी भी पिया जा सकता है।
0: हाँ, पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: कब्ज होने की संभावना नहीं रहती है?
0: नहीं, दूध तो कब्ज को निकालता है, संभावना नहीं रहती है। रात को जनरली हम लोग दूध जब पीते हैं तो थोड़ा सा हल्दी और गुड़ डाल के पीते हैं
1: जी,
0: बिना वैसे दूध नहीं पीते हैं हम लोग, और पीते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा मिलता है। तो सबको सूट नहीं करता है, क्योंकि आजकल सबसे दिक्कत ये होगी मिल्क प्रोटीन से बहुत से लोगों की एलर्जी हो रही है
1: जी जी।
0: तो बहुत से लोगों जिनको गैस वैस बनती है उनको नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है बात वो
1: जी। और अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक और हमारे श्रोता मित्र, आइए उनसे बात करते हैं, उनके सवाल सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, बहुत अच्छी कोयल की आवाज सुनाई पड़ रही है पीछे से।
2: गुड, थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, गांव कुकमा डिस्ट्रिक्ट करनाल है
0: जी।
2: सर हमारा अल्ट्रासाउंड में मेरा और मेरे छोटे भाई का फैटी लीवर आया था, छोटे भाई का फैटी लीवर ग्रेड 1 है और मेरा ग्रेड 2 है फैटी लीवर में। हम दिमाग की दवाइयां खाते हैं काफी सालों से, यानी मैं तो 24 साल से खा रहा हूँ और वो 17-18 साल से खा रहे जी। तो अगर आपके पास आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आ जाए तो ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम ही, और आयुष्मान कार्ड भी हमारे पास, क्या फ्री में दवाइयाँ भी मिलेंगी सर?
0: बिल्कुल भी नहीं, फैटी लीवर का इलाज ही केवल हमारे पास आयुर्वेद में है और कहीं है ही नहीं है आपके पास। आपके खान पान को कंट्रोल करना ही इम्पॉर्टेंट है, और परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आप अगर सबका टेस्ट कराएंगे तो 99% लोगों के फैटी लीवर मिलेंगे क्योंकि हमने जो खाना शुरू किया है खान पान, वह हरियाणा के हैं आपने तो खान पान अच्छा ही होगा आपका, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और रेस्ट ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं खानी है आपको, वो ऑलरेडी उन्होंने बताई होंगी डॉक्टर ने, और नहीं तो
2: कुछ नहीं बताया जी।
0: तो आप आके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आके आप दिखा जाइए, क्योंकि यहाँ क्या है ना, केवल ऐसे सजेशन देना ठीक नहीं है, आपको देख के ही आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
2: ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, धन्यवाद।
1: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा हमसे जुड़े। और डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि ये लंघन क्या है, लंघन क्या होता है डॉक्टर साहब?
0: हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, लगता है कि आयुर्वेद से रिलेटेड हैं ये सब लोग
1: जी,
0: क्योंकि ये लंघन वर्ड ही संस्कृत का है। देखिए अनिल, डॉक्टर अनिल कुमार
1: कालड़ा जी गुरुग्राम से,
0: गुरुग्राम से पूछ रहे हैं
1: जी।
0: तो लंघन, आप डॉक्टर हैं अगर आयुर्वेद के हैं तो आपको पता होगा लंघन क्या है। लंघन का मतलब केवल भूखा रखना नहीं है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, लंघन का मतलब है लघु आहार खाना है हमको,
1: कम आहार लेना है।
0: हाँ, जिससे कि जो डाइजेशन है वो ठीक रहे, ज़्यादा खाने से। अब व्रत वाले व्रत जिस दिन होता है हम लोगों का हिंदू धर्म में, व्रत जनरली इसलिए किया गया था कि हमारा खान पान कंट्रोल रहे उस दिन, और बहुत सारे व्रत किए जाते हैं, लेकिन आजकल तो हम व्रत वाले दिन ज़्यादा खाते हैं बजाय कम खाने के, क्योंकि उस समय अच्छी अच्छी डिशेज बनती हैं तो वो पेट भर के खा लेते हैं
1: जी।
0: तो लंघन का मतलब ये है कि अपने आप को भूखा रखना है। पहले आपने बुखार जैसे आता है तो मेनली उसकी पहली ही चिकित्सा लंघन चिकित्सा है
1: जी, और
0: मतलब कुछ नहीं खाना है, गर्म गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहना है जिससे जो भी चीज़ें अंदर हैं वो डाइजेस्ट हो जाए
1: जी। तो अब ये जो आया है मेरे पास, यानी कि हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज है, और ये हैं राजेश कुमार चौहान जी, कहते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है डॉक्टर साहब, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू।
1: और इनकी बातों से तो लगता है कि ये भी मीडिया पर्सन है, और इन्होंने लिखा भी है कि जैसे कुछ लोग कभी दिन की शिफ्ट में काम करते हैं तो कभी रात की, और हमारे मीडिया के दोस्त भी, तो इनकी दिनचर्या तो बिल्कुल ही गड़बड़ा जाती है, तो सोने के घंटे भी कम हो जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिनचर्या जो आप पत्रकार हैं, हमारे खुद के घर में पत्रकार हैं और हम देखते हैं उनको रात को 12 बजे उनका पेपर फाइनलाइजेशन होता है और वो 12:30 बजे खाते हैं, 2 बजे सोते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे उठते हैं, तो वो ध्यान रखना है अपने को। जो पत्रकार बंधु हैं उनका काम ज़्यादा रहता है उसमें, मीडिया से हम देखते हैं कि कई सारे कंडीशन आती हैं। कोशिश करें आप कि जितना काम है उसको ख़त्म करने के बाद जहाँ आपको नैप लेने का मौका मिले, 20 से 30 मिनट का सोने का नैप जो बीच में रहता है, और जब हम थक जाते हैं तो कहीं भी बैठ के सो जाते हैं।

0: हमने ये देखा है
1: जी,
0: तो उस तरह के एक्टिविटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि जैसे ही आपको मिले मौका आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, रेस्ट लेना फ्री मेंटल फिजिकल सारा रेस्ट। तो जनरली सोने में यही होता है, तो उस समय आप कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर चेयर पे बैठ के चेयर योगा कर सकते हैं, आप अपने आप को काम एंड कूल कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्पायरेटरी जो अपने प्राणायाम की विधियां हैं उनको कर सकते हैं, तो उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा।
1: यानी कि नींद लेना, रेस्ट करना, रिलैक्स करना
0: जरूरी,
1: बहुत जरूरी,
0: जरूरी
1: है। और ये एक और व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं, और ये हैं अनमोल गुप्ता जी सरिता विहार से, और इनकी उम्र है 37 साल। कहते हैं कि मैं 50 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, क्या ये सही है?
0: 37 साल की उम्र है, आप काम की वजह से साइकिल चलाते हैं या एक्सरसाइज की वजह से चलाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे।
1: जी जी,
0: अगर आप साइकिल रेसर हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है और अच्छी बात है। और साइकिल चलाना आजकल के एक्सरसाइज में साइकिल बाइसिकल चलाना एक नया इनोवेटिव आया है कि बहुत सारी एक्सरसाइज उसके द्वारा हो जाती हैं, लेकिन इतना लंबा 50
1: लगातार
0: चलाना थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा उसको अगर कम हो सकता है तो कम करें, और आपकी आदत बन चुकी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं बचपन में, हम लोगों ने 15-15 किलोमीटर साइकिलें चलाई हैं। हम लोग गाँव में हम लोग जाते थे तो मामा जी लोग हम लोग को बैठा के 50-50 किलोमीटर साइकिल चला के ले जाते थे, क्योंकि उस समय और कोई साधन नहीं था।
1: जी जी,
0: तो उस कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करिए, और अगर साइकिलिंग के लिए कर रहे हैं तो खान पान का ध्यान रखिए।
1: यानी कि रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे हैं तब तो
0: ठीक है।
1: डॉक्टर साहब, और एक हमारे पास एक मैसेज है, और इन्होंने लिखा है कि आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम फ्रॉम ओमान।
0: यस,
1: क्या कहना चाहेंगे?
0: गुड, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ओमान हमारे MOU पार्टनर हो गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, और हम बहुत जल्दी वहाँ आयुष चेयर आ रही है।
1: क्या बात,
0: आपको
1: है?
0: बहुत ये अच्छी खुशखबरी दे रहे हैं कि गुजरात से ही उसमें जा रहे हैं आयुष चेयर पे, तो आपको वहाँ भी सुविधाएं मिल जाएंगी।
1: चलिए, और अच्छी तरह से आप जुड़ सकेंगे। जी, एक फोन कॉल सुन लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो।
2: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर, मैं दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड व्यक्ति राम मिलन बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी जी, क्या पूछना
2: चाहिए? सर, मैं 2-3 दिन पहले और कॉल लगाया था, लेकिन उसका जवाब सही हमको आवाज़ नहीं आ रही थी, मिल नहीं पाया था।
1: कोई बात नहीं, लेकिन आज आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत ढंग से आ रही है।
2: हाँ जी, आपकी भी आवाज़ क्लियर आ रही है, इसलिए मैंने सोचा चलो देखते हैं शायद कुछ हेल्प मिल जाए।
1: जी जरूर।
2: तो आपके साथ साथ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे दौरा और मिर्गी किसी को आता है उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा।
0: नहीं, उसको तो आपको हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा
2: सर। आपके नहीं, लेकिन आप कुछ सुझाव कुछ सलाह तो दे बता सकते हैं सर। क्योंकि तो बहुत इलाज कराया सर, उसको कुछ हिसाब किताब बना नहीं, अभी भी उसको हो जाता है। मेरे एक भांजा है।
0: क्या उम्र है?
2: तो सर उसको वही उम्र सर होगी, मान लीजिए वही 25 के आसपास।
0: हाँ, तो आप इसमें जितने भी ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो दवाइयाँ ही चलती हैं मैक्सिमम टाइम, तो इसमें होगा क्या है, उनको हमें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उनको योगा प्रैक्टिसेस करानी पड़ेंगी, जिससे कि वो कंसंट्रेशन थोड़ा अपना बढ़ा सकें। चीज़ों को बढ़ाएंगे तो उनको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आप इनको आयुर्वेद में दिखाएँ ला के, इसका इलाज आपको थोड़ा आपको काफ़ी कुछ इलाज आपको आयुर्वेद में मिल जाएगा इसका।
2: चलिए ठीक है सर।
1: हाँ, जी जी,
0: आप आके दिखाइए कभी वहाँ पे। बिल्कुल।
2: अच्छा,
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो वहाँ करते दिखाते सही रहता।
0: कहाँ की?
1: जी चलिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर लौट कर आते हैं, और भी अपने श्रोताओं के सवाल हैं, जो मैसेजेस हैं, हम उनको लेते रहेंगे। और

0: एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में हम लौट आए हैं, और लौटने के बाद एक बार फिर से हम अपना नंबर दोहराए देते हैं 0112342108 और दूसरा फोन नंबर है 2342108 2। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और हमारे पास इसी नंबर पर यानी कि व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आया है, और ये हैं ऋत्विक जोशी जी। इन्होंने कहाँ से लिखा यह तो नहीं बताया, कहते हैं कि मुझे कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, मेरी एज 45 इयर्स है, मैं इसको नेचुरली ठीक कैसे करूं, आप बता दीजिए।
1: हाँ ऋतिक जोशी जी, बिल्कुल सही बात है। इस समय ऐसी कंडीशंस आ रही हैं क्योंकि हम पूरे टाइम या तो घरों के अंदर रहते हैं या एसी में बैठे रहते हैं, तो हमें विटामिन डी कहाँ से बनेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको धूप में निकलना पड़ेगा, खान पान में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दूध है, दही है, जिनसे कैल्शियम मिलता है और उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो लोग अभी खाना भी बंद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनको आप खाएं। इसमें प्रवाल है, प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, इन चीज़ों का, या किसी से कंसल्ट कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको लेके। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास, आप अपने खाने में थोड़ा सा अगर हो सकता है तो गोघृत को रखें, गाय का घी अगर आपको देसी मिल जाता है तो उसको रखें, रोटी के साथ खाएं। और साथ में सूर्योदय के समय नहीं हो सकता है तो कम से कम 8 से 10 के बीच में आप थोड़ा सनलाइट में जाके और सूर्य नमस्कार करें
0: जी,
1: थोड़ा सा बैठ के प्राणायाम करें, तो आपको सन रेज जरूरी है जिससे कि वो विटामिन डी की कमी पूरी हो सके।
0: तो श्रोता मित्रों, आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफस्टाइल। इस विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं और आप हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं। और इस वक्त मेरे पास यानी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक मैसेज आया हुआ है, और इनका नाम है अनंग उदय बिस्वाल जी, अब बुलंगीर ओडिशा से इन्होंने मैसेज भेजा है। कहते हैं कि मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है, तो गर्मी के दिन क्या खाऊं और क्या नहीं, प्लीज बताएं।
1: क्या नाम बताया आपने?
0: अनंगा उदया बिस्वाल जी हैं।
1: उदया बिस्वाल जी, तो जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो उन्होंने खान पान के लिए आपको मना किया होगा, किसी से नहीं खानी है, थोड़ा तेल घी कम खाने हैं आपको, ध्यान रखिएगा, थोड़े दिन बाद आप खा सकेंगे, इस बात को आप गारंटी रखिए, लेकिन अभी मत खाइएगा तुरंत। और खान पान में अपने को कार्बोहाइड्रेट का पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको वो सब चीज़ें खानी हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसमें

0: हमारा जो बाइल पिगमेंट का काम था वो ख़त्म हो चुका है, इस समय अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। थोड़े दिन के बाद आप सब कुछ खा सकेंगे, तो थोड़े दिन अभी आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। सिंपल रोटी दाल, और दाल में प्रोटीन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपने को अरहर की दाल नहीं खानी है, थोड़ी मूंग की दाल खानी है इसमें। चना मटर नहीं खाना है, गुड़ खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप खाइए तो इसमें अच्छा रहेगा। लेकिन घी तेल जिसमें ज़्यादा हो वो मत खाइएगा, थोड़ा अपने आप को बचा के रखिएगा, नहीं तो फिर पेट में दर्द आपको महसूस होगा और वो दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको मेंटेन करिएगा। क्योंकि हमको खुद को हुआ था इसलिए हमें ज़्यादा एक्सपोजर है इसका
1: जी।
0: और हमारा भी गाल ब्लैडर निकला हुआ, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज हम सब कुछ खाते हैं क्योंकि इस तरह से मेंटेन किया था। और हमारे लिए अभी मतलब घी तेल सब कुछ खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, साल डेढ़ साल आपको ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा
1: जी। डॉक्टर साहब ये, और हमारे पास एक और मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए, ये हैं समर्थ जी हैं बेंगलोर से, 27 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये कहते हैं कि आई एम अनेबल टू गेट डीप स्लीप दिस डेज ऑल्सो, आई एम अनेबल टू स्लीप अर्ली, आई फील वेरी स्ट्रेस्ड ड्यू टू माई करियर, आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ ईचिंग ऑन माई स्किन, आई हैव कंसल्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट बट इट इज़ गेटिंग टेम्प्ररीली क्योर्ड, क्या करना चाहिए?
0: Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपके जो स्ट्रेस कंडीशन है इसकी वजह से इंडाइजेशन हो रहा है और पित्त बढ़ रहा है, जिस पित्त की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो आपको कैसी भी कंडीशन हो आपको थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करना पड़ेगा, और मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी। सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जिसको आपको लगता है कि इसको सुनने से आप सो जाते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा चला के सोइए, और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे। क्योंकि कई कंडीशंस हमने देखी हैं इसमें, और जनरली हम लोग तो इसमें क्या होता है कि काम एंड कूल सिचुएशन देने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को उस सिचुएशन निकाल ले लीजिए, क्योंकि आपकी एज उम्र देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन जॉब्स की प्रॉब्लम्स को वहीं पर छोड़िए और अपने आप को पहले ठीक करिए, देन आपके पास जॉब की वो दिक्कत नहीं होगी। अपने आप को काम एंड कूल करना ज़रूरी है, और मेडिटेशन करिए, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़िए, अपना काम आप करिए, बाकी सब कुछ छोड़िए
1: जी। और ये हैं प्रकाश जी रोहिणी से, इन्होंने मैसेज भेजा है कि मुझे कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, मेरी उम्र 72 साल की है, 2-3 दिन के बाद बहुत मुश्किल होती है, क्या करूँ मैं?
0: आप ज़रूर कुछ ना कुछ लेते होंगे, अगर कुछ नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, त्रिफला का पाउडर रात को सोने से पहले त्रिफला का पाउडर लें, उससे अगर आराम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसको आप रात को भिगो दीजिए और सुबह उसके पानी को पीजिए, तो उसको आपको आधे घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से यूज करके देखें आप, आपको कौन सा फ़ायदा करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड कर देगा।
1: डॉक्टर साहब ये काजल जी हैं, इन्होंने अपनी जगह का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन कहते हैं कि गर्मी के मौसम यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मसूड़ों से खून आने या सूजन की समस्या से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, और दूसरा प्रश्न उनका ये है कि क्या AIIA में आधुनिक डेंटल प्रोसीजर यानी कि जैसे कि रूट कैनाल स्केलिंग या कैविटी फिलिंग के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा मिश्रण यानी कि इंटीग्रेटिव अप्रोच किया जाता है क्या?
0: ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेशन पे ही काम कर रहा है, और हमारे पास पूरी डेंटल यूनिट वहाँ पे सेपरेट है, हमारा मॉडर्न ट्रीटमेंट भी है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है। इस तरह के अगर कंडीशंस होती हैं तो जनरली गंडूस और कवल का प्रयोग किया जाता है, आप त्रिफला का क्वाथ का गंडूस का कवल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऑल इंडिया में आके दिखा सकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छी डेंटल यूनिट है, इतनी अच्छी डेंटल यूनिट आपको कहीं और नहीं मिलेगी
1: जी। और देखिए हम क्योंकि जल्दी जल्दी प्रश्न ले रहे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, और ये मैसेज आया है व्हाट्सएप के ज़रिए, इन्होंने तारीफ़ की है, कहते हैं कि प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी गुड और थैंक्स टू यू बोथ, क्वेश्चन इज इन आयुर्वेद फॉर BP एंड स्ट्रोक हाइपरटेंशन प्रॉब्लम, व्हाट आर रेमेडीज़। ये हैं SM जोशी जी पुणे से, 60 साल की इनकी उम्र है।
0: एस जोशी सर आप बहुत दूर हैं, पुणे में भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग हैं आयुर्वेद के, आप ना हो तो एक बार तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज में दिखा लीजिए, और जो आपने कंडीशंस बताई हैं इन कंडीशंस में यहाँ से हम दवाई नहीं बता सकते हैं, सिर्फ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन को ऐड करिए अपने लाइफस्टाइल में, और उससे सोएंगे अगर आप ठीक से तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर

0: ऑर्गेनिक कारण नहीं होगा तो।
1: जी। और विक्रम सिंह जी दिल्ली से मैसेज भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, कहते हैं कि सर दिन एक अंजीर खा लेने से क्या बॉडी को सारा विटामिन मिल जाता है क्या?
0: एक अंजीर तो कम है, दो अंजीर खाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। काफ़ी लोग बहुत खा रहे हैं, हमने देखा है लोगों ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश के साथ एक अंजीर खा रहे हैं और काफ़ी उससे रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को। तो एक कम्बिनेशन होता है ये हमारा, उस कम्बिनेशन में आप खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दो अंजीर कम से कम एक दिन में खानी चाहिए।
1: जी, उसे रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन हो रहे हैं।
0: जी कोई बात नहीं।
1: ये है आसिफ सैफ जी और ये है मेरठ से, कहते

0: हो गया है, बाहर आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार का एक्सरसाइज करना चाहिए?
1: तुरंत आइए आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, दिखाइए अपने आप को और आपको पंचकर्म थेरेपी की ज़रूरत है, उससे आपको सबसे अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो बिना उसके फिर ये कहना कुछ भी दवाइयों के साथ ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए थेरेपी करानी पड़ेगी आपको
0: जी। और यह है सुशील कुमार भारती जी बिहार से लिखते हैं कि हाथ पैर सुन्न हो जाना किस कारण से हो सकता है, इसका आयुर्वेद में क्या उपाय है, क्या इलाज है?
1: नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं, केवल एक कारण नहीं होता है हाथ पैर सुन्न होने का। डायबिटीज एक मेन कारण होता है, अगर डायबिटीज है, शुगर बढ़ा हुआ है तो ये उसमें होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें होता है, तो इसलिए आप कंसल्ट करें। बिहार में कहाँ से रहते हैं मैं मालूम नहीं है, पटना में भी कॉलेज है, आप पटना में जाके दिखा सकते हैं, वहाँ पंचकर्म वालों से मिल सकते हैं, आपको उसका सही उपचार मिल जाएगा
0: जी। और चूंकि अब मेरा अपना कुछ प्रश्न है श्रोताओं की ओर से, वो भी पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या अम्ला यानी कि खट्टापन और लवण यानी कि सॉल्टी और मीठा और कड़वा यानी कि कड़वी जो चीज़ें हैं और कसीली चीज़ें, क्या इनका भी ऋतुचर्या में खान पान या दिनचर्या में खान पान अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग समय पर होना चाहिए?
1: बिल्कुल होता है। वैसे जनरली हमारे यहाँ भोजन को षड्रस युक्त कहा गया है कि सारे भोजन में 6 के 6 रस होने चाहिए। तो भोजन करते वक्त आपने देखा होगा, अपनी अपनी परंपराएं हैं कि कहीं हम लोग मीठा पहले खाते हैं फिर खाना खाना शुरू करते हैं, कहीं हम लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं। तो अवण लवण और अम्ल ये दोनों तो खाने में होते ही हैं
0: जी,
1: साथ में कटु और तिक्त, क्योंकि आप देखते हैं सारी मिर्चें पड़ते ही हैं उसमें, तो षड्रस युक्त भोजन का अपना इंडिकेशन है और 6 के 6 रस हमारे खाने में होने चाहिए
0: जी।
1: तो इसलिए ये कह देना कि हमको ये खाना ही नहीं खाना, ये कंडीशन वाइज डिपेंड करता है, कौन सी डिजीज़ है। अगर हाइपरटेंशन हो तो हम कहते हैं कि नमक नहीं खाना है, हम कहते हैं डायबिटीज़ है तो हम कहते हैं मधुर रस नहीं खाना है, तो उस तरीके से ये कंडीशंस आती हैं हमारे पास, तो वहाँ पे केवल हमारा रोक होती है। अदरवाइज आपको कोशिश ये करनी है कि षड्रस युक्त भोजन करना है
0: जी,
1: मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु तिक्त कसाय, ये 6 के 6 रस होने चाहिए हमारे भोजन में, तो ही हमारा भोजन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है
0: जी। और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, जल्दी से बता दीजिएगा कि शाकाहारी मांसाहारी फलाहारी भोजन का उपयोग कई लोग करते हैं और क्या इसका भी दिनचर्या ऋतु के अनुसार होना चाहिए?
1: नहीं, होता है, बिल्कुल होता है, अपने हिसाब से कहा जाता है, लेकिन जहाँ पे केवल हमारे पास आजकल की कंडीशन रीजनल और सीजनल की वेरिएशन की बात करते हैं, तो हम किसी भी सीजन में कोई भी फ्रूट मिल रहा है आजकल, तो वो नहीं हो सकता है। हमको रीजनल और सीजनल आहार का प्रयोग करना चाहिए, जिस सीजन में जो चीज़ें मिलती हैं उसको वहाँ खाना चाहिए, जिस सीजन में जो चीज़ें नहीं मिलती उसको वहाँ नहीं खाना चाहिए
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और हमारे श्रोताओं का भी आपने जवाब दिया, मैसेज के जरिए फ़ोन कॉल्स के जरिए बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ दी, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इन सब बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारियाँ दी, वक्त निकाला आपने,
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद। और बहुत सभी श्रोताओं का भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमको पुराने गाने अपने पुरानी जिंदगी याद दिला दी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

गांव वालों, बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 FM।

लो जी, तनखा दा तां मैनूं पता नहीं, लेकिन समा जरूर जा रहा है और समा चला भी गया है। प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच अज बड़ा मजा आया मैनूं तां तुहाडी फरमाइशां नूं पूरा करके, क्योंकि असीं अज बड़े सारे गीत प्ले कीते आ। उम्मीद करदी हां तुहानूं सारयां नूं वी बड़ा मजा आया होएगा। फिलहाल असीं फरमाइशां लईआं सी व्हाट्सएप ते, बहुत सारे साडे लिसनर्स है जिहड़े थोड़े रहि भी चुके ने, उहनां नूं मेरे वल्लों माफ़ी है जी। कोशिश तुहाडी दोस्त ने पूरी कीती सी पर हो नहीं पाई है। सो प्रोग्राम नूं हुण इत्थे ही मैं समाप्त करन जा रही हां, क्योंकि अगला प्रोग्राम जिहड़ा है साडे युवा दोस्त पेश करन जा रहे ने, युववाणी प्रोग्राम, युवा दोस्तों का मनपसंद प्रोग्राम। सो इन्हों दोस्तों का प्रोग्राम भी जरूर सुन के जाना है, तुम इन दलों भी जरूर सुनिया ने, बड़ी मिठिया मिठिया के वधिया वधिया गल्ला करते हैं, तुम्हें एंटरटेन करेंगे। तो उस तो बाद पूरे 6 बजे तुहाड़ी दोस्त आज सुर भी फिर तो आएगी। उन्हीं देर हूँ अपना ध्यान रखियो जी, रब रखा, टेक केयर, तो इंजॉय करते रहो रेनबो चैनल।

0: कितिया ने तो फिर देखते हैं कौन बनता है आज फिल्में नंबर वन।
1: बिल्कुल हरनीत, आज 15 जून नू दुनिया भर च वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। हुण तुसी सोच रहे होगे कि हवा दा भी कोई दिन हुंदा है। जी हाँ, असी हर रोज़ हवा नू महसूस तां करदे हां पर शायद उसकी असल ताकत बारे घट ही सोचते हैं। जदों गर्मी च ठंडी हवा का झोंका हुंदा है तां किन्ना सुकून मिलता है ना हरनीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गर्मियों के विच ते आ हा हा, ईवन 2-3 दिन पहला तो बहुत ही सुहाना मौसम होया पिया सी।
1: जी
0: इन्नी
1: बिल्कुल,
0: सोहनी हवा, इन्नी ठंडी हवा। दोस्तों तुहानू दस दिए कि 2007 दे विच पहली बार विंडे मनाया गया सी, जिन्हों EWEA ने शुरू किया सी। पर साल 2009 दे विच इन्ना मकबूल हो गया कि यह पूरी दुनिया दे विच ग्लोबल विंड डे बन गया। देखो दोस्तों, गल तो बहुत साफ है क्योंकि दुनिया दे विच असी गल करिए पेट्रोल हो गया जो कोई भी होर कोल हो गया खत्म हो जा रहे हैं, है ना, जिदे करके पोल्यूशन दिन सो दिन होर वधदा जा रहा है। पर अजिहे दे विच विंड एनर्जी तो बिजली बनाना एक बहुत ही साफ सुथरा तरीका है जो कदे भी खत्म नहीं हो सकता।
1: जी,
0: ये दिन लोगों ने दसन लिए मनाया जाता है कि हवा दे विच दुनिया नू बदलन दी किन्नी ताकत है।
1: जी, असी फिल्मां च जां पुराने जमाने दीआं कहानियां च पवन चक्कियां जरूर देखियां ने।
0: बिल्कुल,
1: अज दे समें च इन्हां दा रूप बदल गया है। हुण इन्हां नू विंड टर्बाइनस कहा जाता है जो बहुत ही उच्चियां ते वड्डियां हुंदियां ने, बिना प्रदूषण ते बिना बिजली दे काम करदियां ने। इस दे नाल बिना किसे धुएं दे, बिना कोई कोला बालिया ही बिल्कुल मुफ्त ते साफ सुथरी बिजली पैदा होंदी है। इसनू ग्रीन एनर्जी भी कहंदे आ। साडे देश भारत लई बहुत ही ज़्यादा माण वाली गल है दोस्तों कि पूरी दुनिया च हवा तो बिजली बनाउण दे मामले च भारत 4th नंबर ते आउंदा है।
0: वाह जी वाह, जिवें तुसीं हुणी गल कीती ना विंड टर्बाइन दी, तां मैं कल परसों रीड कर रही सी
1: जी
0: इत्थे गूगल ते, तां मैनूं पता चलिया कि एक वड्डी विंड टर्बाइन दे सिर्फ एक वार घूमने नाल जिन्नी बिजली पैदा होंदी है ना, उहदे नाल एक आम घर नूं पूरा दिन चलाया जा सकदा है।
1: क्या बात है। ते हरनीत, हवा ना रब दी इक दात है जिसनूं गुरबाणी च गुरु दा दर्जा दिता गया। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। वर्ल्ड विंड डे सानू यह याद दिवाउंदा है कि जे असीं कुदरती स्रोतां नूं समझदारी नाल वरतांगे ना तां आउण वालियां पीढ़ियां नूं एक साफ ते हरा भरा भविख दे सकदे हां असीं।
0: बिल्कुल, कुदरत ने सानू हर चीज़ मुफ्त ते बेअंत दित्ती है, चाहे ओह धुप होवे जां हवा। बस लोड़ है दोस्तों साडी सोच दी कि एक असीं उहदी वरतों किवें कर सकदे हां ते किवें नूं बचा सकदे हां।

0: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी युववाणी ते सेगमेंट शुरू हो गया है जी फिल्मी नंबर वन। ते दोस्तों असी कुछ इंस्ट्रूमेंटल ट्यून्स जिवें तुहानू दस्सिया ही है, कुछ डायलॉग्स ते कुछ सवाल जवाब लैके तुहाडे सामने हाजिर हो रहे हैं। ते तुसी देने है जी सानू जवाब, ते जवाब किद्दां देने है जी, सब तो पहला सानू कॉल कर सकदे हो 01812342174 ते। तो इस तों अलावा सानू फेसबुक पेज ते आकाशवाणी जलंधर ते अपना ना अपनी जगह का ना ते जवाब लिख के भेज सकते हो।
1: बिल्कुल, तो फिर शुरुआत करते हैं साढ़े अज के पहले सवाल तो। दोस्तों तो एक छोटी जी इंस्ट्रूमेंटल सी सोंग सुनावे, तो सूँ गैस करके दसना है कि यही कौंग है।

वेलकम बैक। प्रोग्राम चल रहा है जी लव यू जिंदगी। ये प्रोग्राम कोई आम प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम जुड़िया होया है जी बढ़िया सारिया मीठिया गल्लां दे नाल, यानी कि साड़ी जिंदगी नाल जुड़िया हुई मोटिवेशनल गल्लां दे नाल। सो जिंदगी दे ना संदेश हुंदा है, कई लोग कहिंदे हन मेरे कोल ए नहीं मेरे कोल ओ नहीं, पर सवाल ए नहीं कि तुहाडे कोल की नहीं है, सवाल ये है कि जो है उस नाल की कर सकते हो, की कर सकते हो। सोचो जो साडे कोल है असीं उहदे कोल संतुष्ट नहीं हाँ, पर सानूं ये नहीं पता कि जो साडे कोल है असीं ना बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ दे विच। ना दोस्तो एक चीज़ ना बड़ी खास है, वो ऐसी एक कला ना जो ना किसी यूनिवर्सिटी ने सिखाई है ना किसी किताब दे विच लिखी हुई है, ये ना पंजाबियों दे कोल बड़ी लभदी है ये कला। जे तां तुहानूं समझ आ गई तो फिर तुसीं गल समझ गए होवोगे कि मैं किस बारे गल कर रही हाँ। मैं गल कर रही हाँ जुगाड़ बारे। जुगाड़ बारे तुसीं बड़ी गल्लां सुनिया होनी है, तो अज मैं भी चलो जुगाड़ बारे गल करन जा रही हाँ। ये मन दे विच मेरे ख्याल इस करके आया क्योंकि मैनू भी कोई दिक्कत परेशानी आ गई सी जिदा कोई हल नहीं लभ रहा सी, फिर मैं एक जुगाड़ लाया जिस नाल हल लभ गया। फिर मैं सोचिया कि ये जुगाड़ तां साडे लिसनर्स भी लगाते होणगे, तो जुगाड़ लगाना कोई माड़ी गल नहीं है। देखो जुगाड़ भी अलग अलग तरीके का होंदा है, कुछ जुगाड़ होंदे ने कभी कोई चीज़ खराब हो गई उहदा जुगाड़ कर देना। आपां जिहड़े पंजाबी हाँ ना हर चीज़ 'च जुगाड़ लभ लैंदे हाँ, चाहे वह चीज़ खराब होवे चाहे जिंदगी क्यों ना खराब होवे। पर इत्थे गल नोट कर लो, मैं तुहानूं इह नहीं कह रही जिंदगी खराब होंदी है, जिंदगी खराब नहीं होंदी, जिंदगी बहुत खूबसूरत होंदी है। साडे देखण दा नज़रिया जिहड़ा उह बड़ा अलग अलग होंदा है, कुछ इसनूं बहुत सोहणा भी कहिंदे होणगे, कुछ होणगे कहिंदे होणगे साडी जिंदगी मस्त चलदी पई है। कुछ लोग ऐसे भी ने मेरे तजर्बे दे अकॉर्डिंग।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जमाने विच हुकम सिंह नू उस दे घर वाले कुड़कुड़ दास बुलाउंदे सन, क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही उस सारयां ते चिकन लगदे सन।
2: ओ रामू, ए पखा क्यों चलदा छड़ता? बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
1: पर अज सारे उन्हां नू प्यारा सिंह कहंदे ने, क्योंकि जदों तो उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तो मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी। PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, अज ही रजिस्टर करो PM सूर्या घर .gov.in ते।

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलां च तेरे वीरा तो कोहां दूर निकल जाएगी।
1: जस चिल मिर्जिया, मेरे वीर दा हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बाकी सब कुछ फुला देवे।

अपनी जिंदगी दे विच एंटरटेनमेंट दी इंडस्ट्री दे विच बहुत ही सोहना मुकाम बनाया।

व्हाट्सएप दे उत्ते सानूं अगली फरमाइश आ चुकी है। लिखा है कि आदरणीय आप हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए। आदर्श नगर मलोड़ पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। फिर उस तो बाद अगला नाम साढ़े को आया है कि कहते कि कोई भी गीत सुनवा दो पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। फिर उस तो बाद साढ़े को अगे नाम होर भी ज़्यादा आए ने, लेकिन उस तो पहला इन्हों की फरमाइश पहला पूरी कर दी। कहते कि जी कोई भी गीत तुसी सुनवा दो।